सम्पूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामानका साथमा घड़ी, रेडियो, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरू, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मर्मत, फोटो खिच्न, फोटो धुलाई गर्न, फोटो फ्रेमिङ, सिसा फ्रेमिङ, फोटो कपी, लेमिनेसन, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, लेमिनेसन, कस्मेटिक आइटमका सम्पूर्ण सामानहरू, नाइलन छाप, प्रिन्ट छाप लगायत जस्तो सुकै सेवा आवश्यक भएमा वाना बजारमा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण काम। साइरस इलेक्ट्रोनिक्स पसल, पाँचकपन नगरपालिका, वाना बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर सुमन श्रेष्ठ, 9823445631।

0: विजय दशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
1: सदा सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: चित्त नयाँ छोरी ज्वाइँ आउँछन् के रे, फलफुल मतला ल्याउँछन् के रे, छोरी त आफ्नै भई ज्वाइँलाई त 100 त दिनु पर्ला नि त छिना।
1: तिस बुढी 100 रुपियाँ त छिना, पैसा र सैसा।

सम्पूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामानका साथमा घड़ी, रेडियो, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरू, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मर्मत, फोटो खिच्न, फोटो धुलाई गर्न, फोटो फ्रेमिङ, सिसा फ्रेमिङ, फोटो कपी, लेमिनेसन, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, लेमिनेसन, कस्मेटिक आइटमका सम्पूर्ण सामानहरू, नाइलन छाप, प्रिन्ट छाप लगायत जस्तो सुकै सेवा आवश्यक भएमा वाना बजारमा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण काम। साइरस इलेक्ट्रोनिक्स पसल, पाँचकपन नगरपालिका, वाना बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर सुमन श्रेष्ठ, 9823445631।

0: Baba kaç tane ninja?
1: Takte dostum. Takteki çirkinli. Sansele. Nakkali. Diz bata. Sildo kadele. Lara kapar nante kapar. Çirkin bitre bata. Roman ban nante. Hero bane çulo sapna thi bitre bata. दिल्ली जाना चाहिए कुछ लोग हैं मैं सब उन्हें तो सत्य उतारने सब एक को कहर मार चाहिए मैं अपने गांव ना मारे कुछ ही रुक के गांव मेरी कसम कोई मार चाहिए कोई नहीं जा मेरी क्या मार चाहिए तेरी बाबा रे गाता अरे अरे

0: अनि देउता मानेन नि के हो फगाउनु पर्छ के हो
1: मन्तर हाल्नु पर्छ होला
2: मैले यता

0: मेरी मेसिनरी सामानहरूको पार्ट पूर्जा आवश्यक भएमा र मर्मत गर्नु परेमा सधैँ सम्झनुहोस्।
1: प्रोप्राइटर कृष्ण थापा 9813978811 कृषि यान्त्रिकरण सामग्री पसल तुमलिङटार बोर्डिङ स्कूल अगाडि।
2: बड़ा दशैं तिहार तथा छठ पर्व 2083 सालको पावन अवसरमा सबै नेपालीमा खुशी, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। थान कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, सर्टिङ सुटिङका कपड़ा, विद्यालय पोशाक, लेडिज तथा जेन्ट्स आइटमका नयाँ डिजाइनदार कपड़ा, बाल बालिकाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण आइटमका कपड़ा, सिरक, डसना लगायत जस्तो सुकै कपड़ा आवश्यक भएमा सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल, मामा होलसेल वस्त्रालय, 557 बिहिबारे बजार। सम्पर्क नम्बर 9840069772।